0: झोले चाहिँ आज पाकि खानु पर्छ है वाइफ चाहिँ सबै आयो
1: आयो
2: पर्यो के कोला है
0: यसो केटा हो भाइ छोडा
3: रमाइला रमाइला छ है तिमी
4: आउनु जानु जानु आउनु
3: होइन यार खेल यार अब चिन्ने होइन खाने मुड छ यार
2: खाने त दाइ
3: जाउँ न
2: दाइ पैसै छैन
0: मसँग छ नि रमाइलो गर्नुपर्छ होइन केटा हजुर
5: ए रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइलो रमाइ

0: सुनो सुनो हम लोग तीन बजे
1: ए समय को साथ में जितु सुनचांदी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4